0: இளம்பு பிரேக் டைம்.
1: बजाजले दिन्छ नयाँ खोज्नेलाई झ्याम्मै उपहार, झ्याम्मै उपहार। तपाईँको पुरानो मोटरसाइकल वा स्कुटर एक्सचेन्ज गरी नयाँ बजाज किन्न चाहनुहुन्छ? अब ढिला नगर्नुहोस्।

Elimbu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाई सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: यो हो हेलम्बु एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज।
1: अब रंग फेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी चमक बसुगो।
2: डाक रसला मसक जयमसी तथा नमस्कार लासो फ्याफुल्ला स्पार्क माई फेथ तथा नला विश्वासी चमक बसुगो अङ्क बयनवेरी रङ्गनी द स्वागत मुला न वियोग तामाङ तिनी रङ्गला लागि चार दिन हिन्दा ना रङ्गला लागि याकर्गे चुनौती प्रस्तुत लबरी से मुला चुरुङ छ्यान कदे तिवन ना से मुला कि रङ्गसे विश्वास लबरी छनौट लस्युगो कि चु आगामी तिकै वर्ष कदे रङ्गला बेनन जीवन ला बेनन भन्दा गेन वर्ष कदे ताला ना से मुला कि रङ्गसी चु दिन दा परमेश्वर चे रङ्गला पिन्सु व छार सुरुवात ला रूपी व्यवहार लस्युगो ताकि रंग परमेश्वर से रंगला तिंगरी थनशुभ बेनन मन बका दे छोना लशुभ मुशुला थे मन का दे हरंग लसी छोना लवरे हमला बिसी सोचप लशुगो परमेश्वर दा रंगला लुईला दोईला दोंग थी वरे पिनशुगो रंगला भूमि का विवाह परमेश्वर से रंगला आत्मा ज्ञान रंग ने लशुभ अद्भुत क्षमता दा स्वीकार लबहिनबा थे दे जब गे लबहिनबा थेन्दे परमेश्वर से थे ताम गदे दा वास्तविक तारी बलाशुला रोमी छ अध्याय चार थे बासलमा यांग ए नोन क्रिस देन छम नोन बप्तिस्मा ग्याम सिसी लुजी ओछे यांग चार बानी बेहोर थोसी ब्रबला लागि शक्तिशाली परमेश्वर आवसे शक्ति ग्याम येसु क्रिस द शिव ग्याम सुना लजी रंगसे दत्ते रंगलन समस्या गदे दोन संघर्ष लजी मुला रंगला निराश गदे हजी यन रंगसे अनुभव लस्यु बनन् थे बेनन्दा लुङ्गो थेन्दे याङला पुनरुत्थान तब प्रभु ख्रिस्त शक्ति ज्ञान परमेश्वर से रंगदा पिन्स्यु व छार लुइलर दाबी लस्युगो चु संसारी तब हरेक शैतानी प्रभाव से ख्रिस्त तब अधिकारला नच्छ झुक्याबला बारी आवश्यक मुला तसै यांसे चु द दाबी लबरी साहसला क्षम नच्छ बडप ताबरी दम्सु मुला लुका पाँच अध्याय 36 ओछे येसुसे थेनी गदेदा उखान गिगे नोन सुङबन खालै निसे बोटो कन्री चार कन गेन्सी आख्या थेरङ लसी ख्याजी बिसम चार कन ए नोन नोङला चार कन गेन बोको कन गेन छ्याम दिक ए नोन अधिक यदि हलाइ से रङ द क्रिसमसला लागि चार कोट पिन्जी बिसम तिगा रङ रङला कोरी गेन गाल लसी पुराना कोरी टालो लगाबला मुसुला उत्तर स्पष्ट मृङ्गमुला देन दत्ते दोनायन लानन क्रिश्चियन का देशे रंगला आत्मिक लुइरी थेरङ लजिबा मुबा थे थेनी कदे रंगला पुरानो व्यक्तित्व चुला बेनन समस्या कदे छमनोन रंगला भविष्यला लुइरी छेङबा प्रयासी लान चिन्तित मुला दोस्रो कुरन्थी पाँच धेर सत्र थेबासलमा चुदे खालै मि ख्रिस देन छ्याम गिक तसी जिन्बा मुला विषम थे छा दोषी पिनबा मुला पुरानो ताम गरे जम्मन मसी जिन्बा मुला च्यागो थे जम्मन ताम छा दोषी पिनबा मुला थे नि थेनी कदे चुदा टास दिबा प्रयास लबरी से मुला ताकि चु थेनी गदे लागरी दोषी कार्यात्मक तगै थेनी गदे चुदा टास दिबा प्रयास लबरी से मुला ताकि चु थेनी गदे लागे दोषी कार्यात्मक तगै लुका पाँच देला 37-38 ओछे खालै मिसे ढिला बोटको ताङ्री ओछे खालै मिसे ढिला बोटको ताङ्री अङ्गुर ल कलिलो निङ्गु आयो चुजी बिसम कलिलो निङ्गु से ढिला बोटको ताङ बोसी ढेला जमहेन्से निङ्गु नेला ओछे ढिला ताङे नोन जे अखेम्बा मुला थेदबासमा कलिलो निङ्गु छार ढिला ताङ्री चुज थेदबासमा कलिलो निङ्गु छार ढिला ताङ्री युसी खान्दोबा मुला रङ ख्रिस यसरी लालन छाड मि मुसुला परमेश्वर से घोषणा लसुब मुला कि रङ पुरानो स्वभाव ज्ञान बेनन ताम गरे हटबा मुला रङला पुरानो सामान फिता किन्न प्रयास थलसुगो बरु ख्रिस रि तब छार लुइरी ब्रवा छनोट लसुगो एफिसी 3:20 परमेश्वर से यङला गुङरी रङला शक्ति ज्ञान गे लमुला ओछे यंगसे रिबादेन मनवर भन्दा लानन पिन्स्यु मुला विगतला असफलताला गेन निराशला सम्झना गरेर राङला दात्तेला परिस्थिति झेङबान परमेश्वर चाहिँ राङदा सृष्टि लसुबार व्यक्ति दोदा दूषित शोभा छोनो थलसुगो बरु तिनी नोन दाबी लसुकी राङला नाम भविष्य चिन्ह चमत्कार देन आश्चर्य कर्म गर्दै भरतला तिग्दा रंशी कल्पना लसुबा दुईरी भन्दा ज्ञान सफलता याङबा ज्ञान याङबा लसुला हरेक दिन आश्चर्य कर्मला आशा लसुगो प्रार्थना लामा आश्चर्य लसुगो जब राङ थे तामला आशा लसुमुला परमेश्वर जे राङला लागि हरेक दिन आश्चर्य कर्म लाभा ज्ञान मसुमुला आमेन। रंगिला जीवनले परमेश्वर जे प्रशस्त आशिष पिन्छु गरी
1: प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन भिक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी नेन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ
2: कार्यक्रमलाई बारे राङनीला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसाम घन्दा सम्पर्क लसिगो घन्दा फोन नम्बर मुला 98685353939 धन्यवाद।
1: हस् त त्यो समय बिदा ताजी राङनी छङमदानु जय मसी नमस्कार।
0: टाइम चेक इट्स 7 PM
3: अहिले साँझको 7 बजेको छ।